चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। तू जादू है गॉड, ये तुम का तू है गॉड।

0: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
1: सही है सही।
0: मजा ही मजा ब्रो। चलो शुरू करते हैं।

Elumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।